टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करे, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर सकते

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435। एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मौसर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati Chamak. Chamak. Aya Stasup Vikhtano Kihushkida, Vikhtanmo Gurzigi, Vikhtanmo Vadanakavi, Yamo Vikhtan Matigi, Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum Stasu the Faradi. کم چی ستاسو دو ویختو خوشکی، خارخ، پا مکمل توگ ختموی. نو بلکل جی، هم اوز زان ل انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل. چی هایست مو یو فدوشی. نو دمیلاوی دو پتا یاد ساتی، فرانتیر فرنیچر، چارفای، نایلون مار، مد مقابل گلی گلاوی فم، تانگ سیٹی. رابطه نمبر 0343-912-1745.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: जमील खाना विले खफाए
3: इंजीनियर भाई खफा बवाले नयम खुलेना में बदबूजी गाखुना में होम जेड़वी और चेकला टूथब्रश कवम नोवराई में विना होम कवी
2: जमील खाना देता खफगान इस जरूरत नष्टा अरसा चलूट से घर दनाली गली प्राइमरी बॉयज नंबर दो स्कूल खोता निर्दय हाफे जाहिर ट्रेडर नया तुता जा स्मार्ट पढ़र ओखलो इंशाल्लाह द टोले मसले वो देहाल सी
3: वाह इंजीनियर भाई इश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदा

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313 91 27 273।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशे, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिए।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pagam 97.4 Pahadpur, Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Trunk. जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज। ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है सेहत की। जनाब सुपहर की 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही आपकी समातों की नजर ये प्रोग्राम के जिसका नाम है केसन टी टाइम शो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। जनाब मुझे कहते हैं खलील ताबिर जवान और आपका और मेरा साथ रहता है पूरा एक घंटे का, यानी कि अब से लेकर ठीक 5 बजे तक। सामिनी किराम कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल जी खैरियत से होंगे, अफियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब, और अपने दिन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पेंड कर रहे होंगे। जनाब 4 बजे का टाइम चाय का वक्त और टी टाइम होता है, और केसन का ये प्रोग्राम भी टी टाइम के नाम से है। आपको एक दफा फिर से चाय का कप जिस तरीके से एनर्जाइज कर देता है और आप दिन का बकिया हिस्सा जो है एनर्जी के साथ गुजारते हैं, बिल्कुल ये प्रोग्राम आपको बेदार करने वाला, आपको जगा देने वाला है, आपके जहनों और आपके जहनों में नक्श छोड़ने वाला है। क्योंकि जनाब केसन की जो बातें होती हैं, केसन के प्रोडक्ट्स के हवाले से होती हैं, और केसन के प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जनाब जी जनाब ढेर सारे फायदे आप लोगों को मिलते हैं, और उन्हीं फायदों को लेकर आप केसन के फैन बनते हैं। क्योंकि केसन के हर एक प्रोडक्ट का ताल्लुक जो है वो खूबसूरती के साथ है, शिफा के साथ है। तो जनाब केसन की जब भी आप कोई प्रोडक्ट एक इस्तेमाल करेंगे, अगली प्रोडक्ट जो है केसन की वो आप अपनी मर्जी से खुद परचेज करना चाहेंगे, क्योंकि जनाब हमारे रिजल्ट आप लोगों को मुतमिन करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं।

लेकिन आप तीन रेडियो स्टेशन डेरा इस्माइल खान में ग्लोबल एफएम 91 के सुनने वाले, डेरा इस्माइल खान में ग्लोबल एफएम 91 को सुनने वाले, पहाड़पुर में रेडियो पैगाम 97.4 को सुनने वाले, और जनाब टांग में रेडियो अमन 88.4 को सुनने वालों को ढेर सारा वेलकम केसन के इस टी टाइम प्रोग्राम में। और आज भी आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें होंगी, और इब्तदाइया इस बात से करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सामईन किराम अल्लाह ताला से एक दुआ की थी जो अल्लाह ताला ने पूरी की, और मेरे ख्याल में कि हमें उस नबी की सुन्नत को ना अपनाना चाहिए। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था, क्योंकि उनको अल्लाह ताला की शान का पता था, अल्लाह ताला की बादशाहत का अंदाजा था कि अल्लाह क्या अता कर सकते हैं। ठीक है जनाब, उन्होंने दुआ की थी कि या परवरदिगार मुझे कुछ ऐसा अता कीजिए कि आज तक आपने ना वो किसी इंसान को अता की हो, ना है किसी नबी को अता की हो, ना मुझसे पहले नबियों को, ना मुझसे पहले लोगों को अता की हो, और ना मेरे बाद आने वाले किसी नबी को या किसी भी इंसान को आपने अता ना की हो, मुझे ऐसा ही कुछ अता कीजिए। तो ये दुआ जो है सामईन किराम, ये क्या जाहिर करती है? ये जाहिर करती है कि जो जिस चीज के काबिल हो ना, आप उससे वही तलब करें। हम अल्लाह ताला से दुआ तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी ऐसी नामुमकिन किस्म की दुआ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से की। तो कहते हैं अल्लाह ताला से जब भी मांगे ना, बहुत बढ़िया मांगे। अल्लाह ताला से हम हमेशा वो चीज मांग रहे होते हैं अपने जहन के मुताबिक जो पॉसिबल होती है। ठीक है, अपनी औकात को देखते हुए ना हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि आप जब अल्लाह ताला से मांगे और कभी ये मांग कर देखे, वो इतना ही अता करने वाला है। अगर आपके दिल में ऐसा यकीन है तो अल्लाह ताला आपको ऐसा ही अता करेगा, और अल्लाह ताला से जब भी मांगे उसकी शान के मुताबिक मांगे। ठीक है जनाब, अपनी औकात के मुताबिक कभी ना मांगे, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और उन्होंने ऐसा मांगा अल्लाह ताला से कि वैसा अल्लाह ताला ने फिर किसी को भी, किसी ना इंसान को, ना जिन को, ना किसी नबी को, किसी को भी वो अता नहीं किया। आप देखते हैं ना, सब परिंदों की जुबानें समझते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ठीक है जनाब, चिरिंद परिंद की बातों को समझ लेते थे, चींटियों की आवाजों को समझ लेते थे, परिंदों को। कभी कोई ऐसा नबी गुजरा, कोई ऐसा इंसान गुजरा जिसके पास ये नहीं? कोई भी नहीं गुजरा। ठीक है, उन्होंने अल्लाह से मांगा था। ठीक है जनाब, अल्लाह ताला से उन्होंने ये चीज मांगी थी और अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक उसको अता कर दी थी, यहाँ तक कि जिन भी उनके ताबे थे। आपको हमने जो कससुल अंबिया के किस्से थे उसके अंदर हमने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का किस्सा सुनाया था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो किस तरह की बादशाहत अल्लाह ताला ने उसको दी थी, लेकिन ऐसे नहीं दी थी। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने ऐसे ही दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा अता कीजिए कि मेरे बाद फिर किसी और को अता मत कीजिए। तो आज के हमारे इस शो का इब्तदाइया इसी बात से है कि अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे अपनी औकात के मुताबिक नहीं, अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगे। मुझे कहते हैं खलील ताबे शवार, और आप लोगों के साथ में मौजूद हूँ जनाब पूरा एक घंटा, तीनों रेडियो स्टेशन टांग डेरा और पहाड़पुर में एक साथ, तो भाई एक वक्त बरह रास्ता।

जी समय ग्राम केसन नेचुरल पाकिस्तान के ये प्रोग्राम है, तो केसन की ढेर सारी बातें आप लोगों के साथ हम करते हैं। और केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं हमारे आप लोगों के लिए, और कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं और आप ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। और अगर कोई हम आपको ऐसा प्रोडक्ट दे दें कि जिसका कोई सानी ही नहीं है, यानी कि अब हम आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताते हैं, ऑयल, शैम्पू, क्रीमें, फेस वाश, सोप्स वगैरह, तो बहुत सारे लोग हमारी चीज़ें वो नहीं खरीद रहे होंगे, ठीक है जनाब, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और कंपनी की इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं जनाब एक जैसी चीज़ें होती हैं तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हर कंपनी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, हर एक कंपनी एक अपने तरीक़ेकार से बना रही होती है, उसकी प्योरिटी का एक अपना अंदाज, एक अपना तरीक़ेकार होता है। उसी तरीके से लेकिन कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं कि जनाब जिनका मार्केट के अंदर कोई उनका जो है आसानी नहीं है, यानी कि उनका अल्टरनेट कोई नहीं है। केसन ने कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाई हुई हैं जिनका जो अभी तक किसी और कंपनी ने नहीं बनाई है, ठीक है ना। कुछ हमारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमने तैयार की हैं आप लोगों के लिए, लेकिन किसी और कंपनी ने वो चीज़ नहीं बनाई है, ठीक है जनाब। तो ये हमारा एक तुरा है कि आपके पास हम आपको जो प्रोडक्ट देते हैं वो बहुत ही म्यारी और बहुत ही यूनिक किस्म के होते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी एक प्रोडक्ट दर्द के हवाले से है, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं केसन ऑस्ट्रिच ऑयल, ठीक है जनाब। केसन शिफाए दर्द ऑयल, शिफाए दर्द ऑयल ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है ना, ऑस्ट्रिच बोलते हैं जनाब शुतुरमुर्ग को, ठीक है जनाब। और शुतुरमुर्ग का ये तेल है, ठीक है जनाब, शुतुरमुर्ग का तेल केसन ऑस्ट्रिच ऑयल, ठीक है जनाब। शिफाए दर्द उर्दू में हम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम ऑस्ट्रिच ऑयल है, केसन ऑस्ट्रिच ऑयल, केसन शिफाए दर्द ऑयल। ये क्यों खास है, ठीक है जनाब, क्यों हम कहते हैं कि जो शिफाए दर्द तेल है इस जैसा किसी और कंपनी का भी मार्केट में, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन दो कंपनियां और भी बना रही हैं ये वाला तेल, ठीक है जनाब। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं कि पूरा टांग का शहर, पूरा डेर इस्माइल खान का शहर या पूरा पहाड़पुर का शहर, अगर आप दुकानों के ऊपर जाएं और किसी से जाके पूछे कि भाई ऑस्ट्रिच ऑयल दें, या उर्दू में बोले कि भाई शिफाए शुतुरमुर्ग का तेल दें, तो कोई भी आपको यस नहीं करेगा, ठीक है जनाब। या अगर आप केसन का ऑयल, ऑस्ट्रिच ऑयल लेने जाएं, तो ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा आपको कह दे कि भाई वो तो नहीं है लेकिन किसी और कंपनी का शुतुरमुर्ग का तेल है हमारे पास, नहीं कहेगा कोई भी आपको, नहीं कहेगा, क्योंकि किसी के पास भी ये वाला तेल अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ केसन के पास है। अब बात करते हैं हम दर्द वाले तेलों की, यानी कि मार्केट के अंदर जो ऑयल मिलते हैं, ठीक है, अब जो दर्द वाले तेल मिलते हैं, दर्द कुशा तेल मिलते हैं, दर्द कुश तेल मिलते हैं, दर्द को खत्म करने वाले तेल मिलते हैं, वो 100 रुपए से शुरू हो जाते हैं, ठीक है जनाब। बाजार में आप जब किसी पसारी के पास जाएंगे या किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर, डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, और उनसे कहेंगे कि मुझे कोई तेल दें मालिश वाला जो मेरे दर्द को खत्म करे, तो 100 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं जनाब, ठीक है जनाब। 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम वो 300-400 रुपए तक जाते हैं। लेकिन केसन का जो दर्द को खत्म करने वाला तेल है ना, वो 700 रुपए का है। पहली बात तो ये है कि ये हो नहीं सकता कि कोई कहे कि भाई केसन का ऑस्ट्रिच ऑयल नहीं है, आप कोई और ले जाएं उस जैसा और पड़ा हुआ है, तो वो झूठ होगा, क्योंकि कोई भी शुतुरमुर्ग का तेल इस वक्त मार्केट के अंदर नहीं है।

जी जनाब, 14 जुलाई मंगल का दिन है आज, और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल जी बराह रास्त आप सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो स्टेशन से, बिल्कुल जी बराह रास्त। अच्छा जी, दर्द वाले तेल की बात कर रहे हैं, और जब कीमत 700 रुपए है तो उसकी वजह भी है, ठीक है जनाब, उसके रिजल्ट भी फिर वैसे ही है। एक मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ कि आम जड़ी बूटियां जो दर्द को खत्म करने वाली होती है ना, आपको बाजार में जो तेल मिलते हैं वो नो डाउट दर्द को खत्म करने वाली जड़ी बूटियों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, दर्द को खत्म भी करते हैं, लेकिन उनका असर आपके जिस्म के ऊपर वाली तह तक रहता है, ठीक है जनाब। वो तेल जो होता है ना, वो आपके जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पर जज्ब नहीं होता है। ये फर्क मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि भाई जो शुतुरमुर्ग का तेल होता है उसका काम बेसिकली होता क्या है। उसके अंदर और बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है जनाब, वो आपके सूजन को भी खत्म कर देगा, ठीक है जनाब, वो आपके दर्द को भी खत्म करेगा, लेकिन हम कहते हैं कि दर्द का जड़ से खात्मा, डीप पेनिट्रेशन। जो शुतुरमुर्ग का तेल है उसकी जो खासियत है या जो मुमासिलत है वो जिस्म के तेल के साथ है। जो आपके जिस्म से तेल होता है आपके जिस्म के अंदर भी तेल होता है, ठीक है जनाब। ये जो अक्सर हम आपको कहते हैं कि गर्मी के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन आपके स्किन के ऊपर होती है और आपके स्किन के ऊपर से जो ऑयल निकल रहा होता है, तो ये जिस्म आपके जिस्म के अंदर पाया जाता है, इसका जो मिलाप है ना वो शुतुरमुर्ग के तेल के साथ मुमासलत मिलता जुलता है उससे बहुत ज्यादा। तो जैसे आप इस तेल को, शुतुरमुर्ग के तेल को, अब ये 3 कॉम्पोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये नहीं है कि ये सिर्फ शुतुरमुर्ग का तेल है, ठीक है। अभी आप लिखेंगे ना, आप लिखेंगे, या आप आजकल AI का दौर है तो आप किसी के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, आप फौरन पकड़ लेते हैं। तो अगर अभी आप ChatGPT को बोलेंगे भी खलील भी बता रहे हैं ये ऑस्ट्रिच ऑयल, तो ये सिर्फ ऑस्ट्रिच ऑयल नहीं है, ये शुतुरमुर्ग तेल नहीं है, इसके अंदर 3 जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हम कहते हैं जनाब विंटर ग्रीन, यूकलिप्टस एंड ऑलिरिसिन कैप्सिकम, ठीक है। अब ये 3 तरह की जड़ी बूटियां हैं और ये बहुत ही ताकतवर तेल है। इन 3 जड़ी बूटियों को लेकर जब हम इसकी अमेजिज बनाते हैं शुतुरमुर्ग के तेल में, यानी कि ये 3 जड़ी बूटियों को ब्लेंड किया जाता है, ठीक है जनाब, इन 3 जड़ी बूटियों का जूस बनाया जाता है शुतुरमुर्ग के तेल के अंदर, ठीक है जनाब। आप जूस बनाएं कभी, ठीक है जनाब, जूस बनाते हैं तो कैरियर क्या डालते हैं उसके अंदर, कैरियर आपका मिल्क होता है, ठीक है जनाब। दूध डालते हैं, फिर उसके बाद चीनी डालते हैं, बर्फ डालते हैं, आम डालते होंगे, ठीक है जनाब, और इसको ब्लेंड करते हैं तो जूस बन के आ जाता है। तो इसको, आम को जूस बनाया किस चीज ने, आम जो आपने डाला उसको, मेन चीज कौन सी थी जिसने इसको जूस बनाया, तो वो मिल्क था जनाब। तो जूस के अंदर कैरियर क्या होता है, जूस के अंदर जो कैरियर होता है वो दूध होता है। इसी तरीके से ये जो दर्द कुछ तेल होते हैं इनके अंदर भी कैरियर ऑयल होते हैं। तो हमारा जो कैरियर ऑयल है, यानी कि जिसमें ये ऑयल बन के आपको मिलता है, वो शुतुरमुर्ग का तेल है, ठीक है जनाब। जड़ी बूटियों को उसी के अंदर ब्लेंड किया जाता है और ये

यही जड़ी बूटियां अगर आम तेलों के अंदर हो, सरसों के तेल के अंदर हो, जैतून के तेल के अंदर हो, तो ये इतनी असर अंदाज नहीं होती हैं। ठीक है जनाब, ये थोड़ी वक्त के लिए आपको शिफा दे सकती है, लेकिन यही जड़ी बूटियां ऑलिविसिन कैप्सिकम, यूकलिप्टस एंड विंटर ग्रीन, जब शुतुरमुर्ग के तेल के अंदर ब्लेंड होकर आप अपने जिस्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो डीप पेनिट्रेशन के साथ बहुत तेजी के साथ आपके जिस्म के अंदर जाती हैं, चाहे वो कमर, ये तमाम तरह के जो दर्द हैं उनको खत्म करने की सलाहियत रखता है। आपके जिस्म में मौजूद किसी भी हिस्से के ऊपर कोई सोजिश है, ठीक है जनाब, इन्फ्लेमेशन है, सूजा हुआ है, तो उसमें फौरी तौर पर ये जो ऑयल है ये फौरी तौर पर काम करता है।

जनाब, सबसे बड़ी जो खूबी है शुतुरमुर्ग के तेल के अंदर, वो बहुत आसानी के साथ ऑयल को आपके जिस्म के अंदर ले जाना है। ठीक है जनाब, आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो ये फौरी तौर पर जो है एक्टिव जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद है वो बैरूनी तह से गुजार कर बराह रास्त दर्द और जो सूजन का मरकज होगा वहां पर पहुंचा देता है। ये बहुत ही कीमती ऑयल है जनाब, बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑयल हमने बनाया है और इससे हजारों लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। हजारों लोग जिनके पुराने से पुराने दर्द थे, ठीक है जनाब, पुराने से पुराना मसला था। यहाँ पर भी आप लोग एफएम के ऊपर भी सुनते हैं कि कितने लोग हमें आके फीडबैक इसके बताते हैं कि जनाब इसको इस्तेमाल करने से उनको कितना फायदा हुआ है। लेकिन ऑयल का एक बार आपको बता दूं कि इसके लिए लगातार कुछ लोगों को पहले दिन के अंदर ही इसकी मालिश से अफाका हो जाता होगा। पहले दिन ही जब लगाते होंगे तो उनका दर्द खत्म हो जाता होगा। कुछ लोगों का दर्द थोड़ी देर के लिए तेज भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी इसकी एक वजह होती है। और इसने पेनिट्रेट होकर कुछ लोगों का पहले से जो दर्द है मामूली तौर पर उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है जनाब, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है जनाब। ये किसी की कुछ किस्म के खास किस्म के लोग होते हैं जिसके अंदर जो है मसल्स का प्रॉब्लम होते हैं और मसल्स की वजह से उनका पेन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये वक्ती तौर पर होगा और असल में ये जड़ में पहुंचकर आपके उस दर्द को, बहुत सारी खवातीन होती हैं जिनको कंधों का दर्द होता है, ठीक है जनाब, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कमर का शदीद दर्द होता है, बहुत सारे दर्द हैं जिनको टांग के किसी एक हिस्से का दर्द हो सकता है, बाजू के किसी एक हिस्से का दर्द हो सकता है, बाजू जैम हो सकता है जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, ठीक है जनाब, एक ही जगह पर आपका गोश्त रुक जाता है और आप अपने बाजू को हिला नहीं सकते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिज्म है जो केसर शिफा दर्द का है वो बेसिकली सामिन इकराम कोल्ड एंड हॉट थेरापी है, ठीक है जनाब, कोल्ड एंड हॉट थेरापी के थ्रू ये हमारा ऑयल आपके जिस्म के ऊपर काम करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, वो अपनी जगह पर आपके जिस्म को ठंडा भी करते हैं और अपने तरीके से आपके जिस्म को गर्म भी करते हैं, ठीक है जनाब। जैसे कि इसके अंदर यूकलिप्टस है वो आपके जिस्म को ठंडा करेगा, लेकिन जो इसके अंदर कैप्सिकम, ऑल रिसिन कैप्सिकम है वो आपके जिल्द को फौरी तौर पर हीट अप करेगा। तो जनाब ऐसे लोग कि जिनकी जिनके टांगों के अंदर पेन होता है, टिंगलिंग होती है, ठीक है जनाब, और रात को सोते वक्त जो है वो अपनी टांगे जो है वो बिस्तर के ऊपर मार रहे होते हैं, उनमें खून की क्लॉट्स का इश्यू होता है, यानी कि खून जो होता है क्लॉट्स की सूरत में, रगों की सूरत में वो गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से खून रगों के अंदर चल नहीं पाता, और जब खून नहीं चलता तभी जाके आपको वहां पर प्रॉब्लम होता है। अक्सर यही होता है कि जिस्म के आपके किसी भी हिस्से में जब खून की रवानी मुतासर हो जाती है, यानी जब खून जो है चलना रुक जाता है किसी वजह से, क्लॉट्स बन जाते हैं, गाढ़ा हो जाता है किसी भी वजह से, तो वहां पर क्या होता है जनाब के वहां पर दर्द शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप केसर शिफा दर्द को इस्तेमाल करेंगे, इसकी मालिश करेंगे, तो वहां पर आपके जिस्म के उस हिस्से में खून की जो गर्दिश है, जो सर्कुलेशन है, वो जो है बहाल होती है और आपका दर्द खत्म हो जाता है।

0: भर दे सुरूर।
1: जी जनाब, सुरूर और सुकून जो है वो आपको इस ऑयल से मिल सकता है। आपके घर में भी 50 साल से उम्र के लोग होंगे, और जब 50 साल से ज्यादा की उम्र होती है तो फिटनेस नहीं रहती है, बुजुर्ग जो है फिट नहीं रहते हैं और बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है, नमाज पढ़ने में, रुकू में जाने में, सजदा करने में जो है हमेशा मसाइल का सामना रहता है। तो केसन शिफा दर्द की दिन में 3 से 1 मरतबा मालिश, यानी कि बहुत ज्यादा पुराने दर्द हो, बहुत ज्यादा पुराना आपके जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, पट्टों का दर्द हो, तो इसकी मालिश आप सुबह दोपहर शाम 3 दफा करें, ठीक है जनाब, नहीं तो 2 दफा करें या फिर 1 दफा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग हमें जब बताते हैं और वो इस ऑयल से मुतमइन भी होते हैं तो बता रहे होते हैं कि हमने इसकी मालिश जो है वो दिन में 1 दफा की है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, गर्मी है वैसे, टेम्परेचर है, गर्म ही होता है, लेकिन अच्छा होता है कि इसको अगर थोड़ा सा गर्म करके आप मतलूबा जगह पर लगाएं, जोड़ों का मसला है, पट्टों का मसला है, चलने फिरने में छोटे बच्चे होते हैं, असाबी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, तो इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुर्दा जिस्म के अंदर, कमजोर पट्टों के अंदर जान डालने का, दर्द को खत्म करने का और सूजन को खत्म करने का काम।

0: दर्द टैबलेट्स को
1: जनाब बगैर साइड इफेक्ट के, ये बहुत ही बेमिसाल तेल है, बहुत ही बेमिसाल ऑयल है, पेन किलर ऑयल है, जो आपके पुराने से पुराने दर्द खत्म कर सकते हैं। सलाम भाई, आप लाइव हैं क्या भाई? कब ला रहे हैं वेट गेन फार्मूला? और चाहिए पक्की, मुझे भी चाहिए और दो बंदों को भी चाहिए भाई प्लीज। दानिया जो है हमारे साथ मौजूद है, दानिया बहुत जल्द, बहुत बहुत बहुत जल्द, बहुत बड़ी परेशान नहीं होना जनाब। सलाम सर, क्या हाल है?
2: से पुराना दर्द अब
1: उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। शो बेस्ट है, आवाज और अंदाज हमेशा की तरह बहुत प्यारा। लास्ट में अरूबा, महानूर और सबको सलाम। उम्मे हरम, ओ माय गॉड, बहुत अरसे बाद उम्मे हरम ने आप हमें जाएंगे। सलाम भाई, सबको सलाम। चाचू गफूर के पास शायद शैम्पू और तेल खत्म हो गया है, और मेरी अम्मी के जोड़ों में भी दर्द होता है, मालिश तेल भी चाहिए, क्या मिल जाएगा? सहरिश हूँ पंजराई से, शुतुरमुर्ग तेल चाहिए। शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बेहद अच्छा होता है, और जब आप नाते लगाते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। सहरिश है हमारे साथ पंजराई से, बिल्कुल जी चाचू, चाचू गफूर के पास चीजें खत्म हो गई हैं। कल वो लेके जाएंगे, तो आपने अपनी अम्मी को हमारे मालिशी तेल के, हाँ जी दर्दी तेल, दर्द तेल से मालिश करवानी। मुनव्वर हुसैन बहुत अरसे बाद,
2: नहीं जान,
1: ओह माय गॉड, वेलकम करेंगे मुनव्वर हुसैन कोटला लोधियान वाले को। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा है।
2: गर्दन
1: कोई कोठे को लाप पौड़ी असा केसन दी
2: हाल,
1: ग्लूटा वाइट क्रीम भी मंगवा छोड़ी।
0: टैबलेट्स को अब क्या
1: रे भाजी साहब, सुनने वालों को बर्फी वाला सलाम। खलील भाई आपको सोहन हलवे वाला सलाम, बहुत खुशी हुई। मुनव्वर हुसैन जब भी आते हैं मीठी मीठी बातों के साथ आते हैं जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ के यूहिना गुल, माय सेल्फ के यूहिना गुल नूर, कैसे हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुल, कैसी हैं आप? ठीक है, अटेंडेंस लगा दें, शो हमेशा की तरह जबरदस्त है। और कहते हैं कि सब बहनों को सलाम भाई।
2: पुराना दर्द अब होगा दूर, जिस्म में डाले नई जान, भर दे सुर
1: गरा नोरंग तूस। इनाम बलोच है रमजान दीवाना, केसन दर्द ऑयल जिंदाबाद।
2: हर जख्म तो भूल जा,
1: रमजान दीवाना केसन दर्दी ऑयल जिंदाबाद, शिफाए दर्द ऑयल नाम है केसन का जनाब। और जो भी लगाएगा फिर यही नारा लगाएगा,
2: तो अब कह
1: केसन शिफाए दर्द जिंदाबाद।

जी जना, बेहतर सर्कुलेशन जो है वो केसन शिफा दर से होती है। और बेहतर सर्कुलेशन का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर, टांगों के अंदर, कमर के अंदर, कंधों में, पट्टों में जब भी दर्द होता है तो वहां पर खून की रवानी

0: कि इतनी प्यारी प्रोडक्ट, कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, 700 लगाते हुए तकलीफ होती है, लेकिन यकीन करें ये थोड़ी सी तकलीफ है, इस 700 से आपकी बड़ी बड़ी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जरूर इस जगह पर पैसे लगाइए और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ये ऑयल खरीदिए, जो आपको बहुत ज्यादा, बहुत जल्द और एक दिन के अंदर जो है फायदा पहुंचा सकता है। ठीक है जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने बेहतर।
1: इट्स 5 o'clock, आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन, जन रंग अमन। Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
1: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं, 0313 91 27 273।
4: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
5: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल ले, अविलाजी सुनत अमल ले।
6: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़िदली यो, डेर गर्जिदली कड़िदली यो।
5: नो बिल्कुल मायूस के गई मां, मायूस के गई मां। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
6: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
5: 0319 55 23 404।

0: जी लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आप लोग शामिल हो रहे हैं। और जीते रहो शहजादी जी। ग्रानु कदर मनु अरविंदन को तासुकाल बिल्कुल उसका बोले 03-04-99-25-388 यानी 03-04-99-25-388। वैसे अस्सलाम वालेकुम तासीर भाई सुन गए बिल्कुल शियम वैसे जूनी शियम दटा कमा खेल ना मैसेज में शामिल का फखीर जूनीश जूनीश चिरंग गए शाही ठीक ठाक ही तबेसियत तिशरा ओ दाखो में टूल किलीवाल रा रवान दिशा गोल में खबल खबलवान रा रवान दी जार देवी अगर चोर तो भाई जार मैं अबला खबर न कहूँ।
1: परमिनेंट कॉस्मेटिक दुकान दुकान के हर रंग के स्वास्थ्य का
0: जी परमिनेंट कॉस्मेटिक्स दुकान शिकुम द आदितासु इलाको ची चीर तदा चलो जी ओके ओके ओके
1: लगा खैस्ता लाला
0: जी दी परमिन कॉस्मेटिक्स दुकान सिकुम द आप टांग छि परमिन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट सिकुम दी आप बता सु अमिला भी जी मंसूर जर्नल स्टोर ना सिकुम हाजी जरबत खान साहब दुकान द जी जरबत खान हाजी साहब सिकुम दुकान द अल्ता बता सु ता मिला भी जी चा

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल। जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक चमक। आया स्तासुप विख्तानो की खुशकिदा विख्तान मो गुरजेगी विख्तान मो वदन कवि या मो विख्तान मातीगी। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल हम स्तासु दफारदी کم چی ستاسو دی ویختو خشکی خارخ پا مکمل توگ ختم بی نو بالکل جی هم اوز زان ل انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چی هایست مو یو فدوشی نو دی ملاوی دو پتا یاد ساتی فرانتیر فرنیچر چارفائی نایلون مار مد مقابل گلی گلاوی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745।
4: रेडियो अमन 88.4 टांग रेडियो अमन जीत की लगन।
5: नो टेंशन राइस फेस वॉश कम चे सास मुख्तवर के खुलाख है सास तास मखड़ी नरम मुलायम हगज मुफेंद चे वाई चे दमा को मखमदे दहुना तेल सरी दी या ददीने लवास्तर गुलांदी थोरी थोरी हलके जुड़ी शेवी दी आगे के वजह मु गड़ेरे ज्याते परेशान हु नो बिल्कुल जी पो मार्केट के ओस अवेलेबल दी नो टेंशन राइस फेस वॉश और सरा नो टेंशन फार्मूले क्रीम कम पैसे मात्र अच्छी सास मुख बशी नरम मुलायम चमकदार और दस्तर गुलांदी थोरी थोरी हलके पा मुकमल तो गाल रिकवी जी बिल्कुल दो इंतजार दस खबरें हम उस लाशे पर मार्केट के नो टेंशन राइस फेस वॉश नो टेंशन फार्मूला क्रीम और नो टेंशन ब्यूटी सो प्रवाह ले और इस्तेमाल के मेन शिलाफ खुली रिजल्ट बताओ तो मिलावेगी नो बिल्कुल परेशान के गहमा पाओ मार्केट की अवेलेबल दी नो टेंशन प्रोडक्ट्स जाने रवाह ले इस्तेमाल के मैंने नजीद
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
6: क्या आप बालों के गिरने खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
6: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास। हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان۔ کمانڈر ڈش واش، برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے۔ اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی، نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس۔ ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تار و تازہ اور پر اعتماد۔ معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر۔ کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر، برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش، روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ۔ آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ہر گھر کا اعتماد، ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی۔ تو پتہ یاد رکھیے، رمضان مارکیٹ، دکان نمبر 28، پروپرائٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0313-91-27-273۔
8: دیجیے

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? आप फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
6: और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है, स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर सकते।

ओके सी, और इसी में समय तक कवल ऐसे सिफर 313-785 यानी 725-1884 0-300-375-1884 में बिल्कुल तुझे रुतला ले शे मतलब ती प्रोग्राम शे से कवल ऐसे एसएमएस कवल ऐसे कॉल कवल ऐसे जी पॉसिफर 963-511-400 में बिल्कुल तुझे मतलब कॉल है कवल ऐसे खासी 0963-511-400 में कॉल कवल ऐसे

और दीदी ने लवासी सब पोट्री बहुत शामिल हो सी प्रोग्राम के सी असा पोट्री बतो से हर सर शामिल हो सी पो प्रोग्राम से जिकला तो जिकाल को एसएमएस के नसन असा पोट्री ता सुजान सर अड़े सी सब जर अड़े सी जो प्रोग्राम द घंटे जिकम द अपेक्षा लिखी शी हां के हर सड़े काल के एसएमएस के सी काल को वैसी एसएमएस को वेरा ता सी सला दी पोट्री है सी सन सर अड़े सी سمينة سنوة نخنا منو هي بيخم جون وس وس منو أمينة سنوة نخنا منو هي بيخم جون وس وس منو كبيع جون ده شم كميا بيم

ओके जी, अहाँ बड़ बच्ची उदय विकन परुन से पजड़ा तले था अहाँ बड़ बा लउदय विकन जवे द अमेरिका।